काबू दे रहा कहा ना काबू तेरे शरिया दिए लुम अलो बना ला का पंजुकनी क्या ही मकानी खुले मोनो आही मकानी करो आऊ तू तो दायरे होई दायरी वा दायरे आया उमुरो ना खुदबा अठी भी आओ ना खुदबा एला बोवं कोटमा अभी आया घुरी वा नाइरा बाबा ओ तेरे लमरासी